गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे हैं और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार ना तावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणां नाल मन जोड़ लैंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणां दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लैंदे ने रंग च रते होए

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख छमे दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी सोधदा जाए उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया एक शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

0: देह दस मन चाओ न जाए विसूरिय, देह दस मन चाओ न जाए विसूरिय,
1: होए पवित्र सही चरना धूलिय।

बड़ा ख्याल रखता है। जब मात पिता भी ख्याल रखने जोगे नहीं सन उदों भी उसनू ख्याल सी। इतना ख्याल सी जन्म मेरा मगरों होया मेरे भोजन का प्रबंध पहले साहब कलगीधर पातशाह दे कथन अनुसार। बंदा ना समझे साहब कहंदे ने जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए ज्ञान न दे। दंद नहीं सन दुध का प्रबंध पहला कीता, जे दंद आए ने ध्यान का प्रबंध पहला। ते सच करके जानना जिवें जिवें बुद्धि विकसित होंदी है प्रभु वालों गुरु के रूप में ज्ञान का प्रबंध भी पहला ही मौजूद। ते जे हुण मात पिता खुराक देन शरीर की पालना करना चाहन ते बच्चा सिद्धि हो जाए मां बाप की संभाल तो प्रतिपालना तो बारा हुंदा चला जाए। जो खान नू देन ओ ना खावे जिस तो वर्जन ओ खावे, जिथे ओ जान नू कहन उथे ना जावे जिथो वर्जन उथे नू दौड़े नुकसान करावे। सुजान माता पिता बच्चे का भला लोड़ते ने। कई बार ऐसा भी होया सुजान बाप ने सूझवान मां ने बच्चे नू किते मारिया भी हो लेकिन उस मारन विच भी भला छुपे, उस तारन विच भी उसके जीवन का शुभ चिंतन का भाव है। उस बच्चे की जिंदगी बना देने वास्ते किसी वेले थोड़ा बहुत घूरिया भी हो। इसे तरह कदे कदे ऐसा भी होया तुसा वेखिया बच्चा बहुत सतानिया करता है, बहुत नादानिया करता है, मां नू बड़ा तंग किया, बड़ा परेशान किया। शाम पई ये बाप घर आया ते मां कहिंदी देखो जी तुहानू एक गल कहनी, कहो काका हुण हत्थां च नहीं रहिंदा, बहुत तंग करदा, बहुत परेशान करदा, सारा दिन गुआंढियां दे बच्चियां नाल लड़दा है। हालांकि बच्चे ने कादा लड़ना, बच्चा बड़ा निर्वैर होंदा, इहदी लड़ाई बड़ी आरसी होंदी, इधरों लड़दा है ते जिन्ने चिर नूं इहदी हमायत विच उहदे मां प्यो कट्ठे होंदे उन्ने चिर नूं फिर मन के खेड़दे पैंदे। भोला भाव है लेकिन मां शिकायत कर रही कहिंदी आंढियां गुआंढियां नाल लड़दा है, गलत चीजां नूं हथ पाउंदा है, उलामे आउंदे ने। ते जिवें जिवें उह गल्लां करदी है ना उवें उवें बाप दीआं अखां च गुस्सा आउंदा चलिया जांदा, उन्हूं इस गल की घबराहट है ये बच्चा नलायक हो जाएगा ते मेरा नां डुलेगा, मेरे नां नूं कलंकित करेगा, उन्हूं गुस्सा आउंदा चलिया जा रहा। ते मां ये भी वेख रही है कि इन्हूं गुस्सा आ रहा ते फिर कहती है देखो मैं तुहानूं कुछ नहीं कहना, हुण कुछ नहीं कहना, जे तुसीं बच्चे नूं कुछ कहना तो फिर मैं तुहानूं कुछ नहीं दसदा, मैं तुहानूं ये बेनती करनी है भी ये ठीक है, उन्हूं समझाउण दी लोड़ है, उन्हूं परचाउण दी लोड़ है, पर आखिया जे कुछ ना, भाव मारिया जे ना,

मैं चित्रकार भी हाँ ते बुत काढ़ा भी हाँ। मैं चित्र भी चित्र लेना ते बुत भी कर लेना। और मां मैं ऐसे बुत कर सकना लोग वेखते रह जान, पिता भी वेखता रह जावे, तू भी वेखती रह जा। मां कहन लगी अच्छा हर तरह के बुत कर लेना। कहिंदा मां बड़े बुत कड़े ने, मेरा उस्ताद वेख वेख के शशधर हैरान रह जांदा सी। मैं तेन विखावगा हूं, मैं बुत कड़ांगा ना इत्थे तेन विखावगा। मां कहन लगी इस तरह करी, पहला बुत जिहड़ा तू घड़े ना वो एक बच्चे का नव जमे बाल का बुत घड़े। नवजात शिशु छोटा जिहा जस्ट बॉर्न, उस छोटे जिहे बच्चे का बुत बना के लिया मेरे को। फिर मैं तेन वेखांगी तू कि कोई बुत घड़ा। कहिंदा ना मां भी कोई गल है। लग्या रहा पत्थर नाल दो तीन दिन मत्था मारदा रहा। अपने वालों ने मां की खुशी लैण वास्ते, मां दियां शाबसां लैण वास्ते बाप नूं यह दसण वास्ते कि मैं बड़ा कुछ सीख के आया। उस बुत ते बड़ी मेहनत की, दो दिन बड़ी मेहनत की, तीसरे दिन उसनु पालिश किया, बड़ा चमकाया, कपड़े च लपेटे है। मां को लाया, कहिंदा मां देख की है। मां कहन लगी की है। कहिंदा जिहड़ा तू किया सी ना बुत घड़, वह बुत घड़ के लिया, बच्चे का बुत है, देख कपड़ा उतारे। वाकई मां दी अखां च ऐसी चमक सी जिहड़ी होनी चाहिए एक सफल बच्चे की सफलता वेख के, प्रसन्नता नाल भर गई। लेकिन वेखिया बच्चे के दिमाग च हंकार भरिया है, ते कलाकार नूं हंकार नहीं सोभदा, बल्कि इंसान के हिरदे विच जिन्ना चिर हंकार है उन्ना चिर निरंकार किथे रहेगा। मां चाहुंदी है कलाकार भी बने, लेकिन चंगा इंसान भी बने, भगत भी बने। ते जे हंकार नाल भरिया रहा है तां बाप तों वी अगाह होण दीआं गल्लां करदा है, मैनू वी ये ते कहिंदा है मां देख इहो जिहा बुत तूं कदे वेखिआ है, तू कदे इहो जिहा बुत वेखिआ है कि नहीं जिंदे जिंदे वर्गा जिंदे जागदे बच्चे वर्गा। मां कहिंदी इहनूं कह ना हिले जुले, इहनूं हिला जुला ना। कहिंदा मां हिल जुल थोड़ा सकदा, इह हिलेगा थोड़ा, इह तां पत्थर है। कहन लगी फिर जा पत्थर नहीं किसी होर चीज का बना के लिया, वह बुत बना के लिया जिहड़ा हिले जुले, जिहड़ा रोवे हसे हिले जुले बाहां मारे लत्तां मारे, मैनू इहो जिहा बुत बना के लिया। के सोची पै गया, बड़ा सोचिया। कहन लगा मां बुत तां मिट्टी दे भी बन जाणगे, लक्कड़ दा भी मैं घड़ के लै आवांगा, होर भी किसे मादे दा बना के लै आवांगा, पर मां आ जिहड़ी शर्त रखी पई ना हिले जुले रोवे हसे ये तो नहीं ना हो सकता बुत। कह लगी फिर रहन दे, फिर तू कोई कलाकार नहीं, मैं तेनू जमया सी ते हिलदा जुलदा बोलदा रोंदा हसदा बनाया सी, तू मेरे नालों वड्डा कलाकार नहीं बन सकिया, बाप नालों वड्डा किथे बनेगा, तू तो अजे मेरे बराबर का कलाकार नहीं। मैं तेनू घड़िया सी इस पेड़ च रख के, ते मैं जिस वेले तेनू जन्म दिता सी तू हसदा बोलदा रोंदा हिलदा जुलदा सी, ते तू जिहड़ा बुत बनाया है जिथे मर्जी चुक के सुट दे ओ, जरा आवाज नहीं कर सकता, हिलजुल नहीं सकता, तू कादा कलाकार। चरणा ते पै गया, कहन लगा मां वाकई तू वड्डी कलाकार है जिन्हें मैनू जन्म दिता, मैं तां एवें हंकार नाल भर गया, मैं तां तेरे बराबर का कलाकार नहीं हो सकता। उस वेले मां ने पिट से हथ रखिया, कहन लगी कलाकार मैं कोई नहीं हूं, तेरे मन च भुलेखा ना रह जा, मैं कलाकार कोई नहीं हां, मेरे अंदर जिसने घड़िया सी ना तेनू असली कलाकार हो। मत हंकार में आई, मेरे अंदर पै हो तेनू वह घड़ रहा सी, ते तेरे हथां च बैठा हो पत्थरां दे बुत भी घड़ सकदा है, तेरे हथां च बैठा हो चित्र भी घड़ सकदा है, असली कलाकार तां उह है। मत किते भुलेखे दे विच भरिया आ हंकार नाल भर जावे, अज तू मेरे नाल ते बाप नाल उच्चा होण दी कोशिश कर रहा है, कल नूं निरंकार नूं चैलेंज कर पवे, ईश्वर नूं चैलेंज कर रवे, प्रभु नूं चैलेंज कर पवे, ना काका किते हंकार च ना भर जा, तू फिर बच्चा ही है, तू फिर बाल ही, आपां सारे बाल ही। असली कलाकार असली घाटा करने वाला ते प्रतिपालना करने वाला तां उह है। तैनू छोटे जिहे नूं बाल रूप दे के ते फिर बाल तो जवान करना, जवान तो तेरे बाप वर्गा महान करना है, उहदे हथ विच है। मत किते भुलेखे च रही, जे तां इह बिरती बनी रहे ते बंदा बड़ा शांत रहिंदा, ते फिर तां मत लैण जोगा भी रहिंदा, गुरु की मत लैण जोगा, मापिया की गुरमत सुमत लैण जोगा, प्रभु दे भै च भी रहेगा। लेकिन जे बंदा हंकार नाल भर जावे, समझे मैं ही कलाकार हाँ, मेरी मत वधिया है, फिर गुरु की मत किथे रखेगा, मां बाप की सिक्ख्या किथे रखेगा। पहला तां इह समझ लईए साडा जन्म अपने आप नहीं, जन्म देने वाले मां बाप बैठे ने, मां बाप दे उत्ते उह बैठा,
असली बाप बैठा है। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौ ने तेरे अखुट भंडारा, तरह तरह के पदार्थ बख्शन वाला बैठा है। जेता निगाह ओदे ते रही बड़ी शांति रहेगी। महाराज सच्चे पातशाह उस ते निगाह पवाउंदे ने, कहिंदे ओदे बालक बन के रहिए जिसने

मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा। ऐसे तरह जिन्हां ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़ियां पदार्थां दे नाल नेव लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे हन जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाना है उदे लई तू रात दिन भटक रहा है, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है, जिथे तू सदीवी काल वसना है। जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है उस घर की कोई तैनू चिंता ही नहीं। ये शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करदा है, चंगे वस्त्र पहनदा है, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नू जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनू भुखिया ही मार छड्या, उसनू कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे बस्तर नहीं पहनाए, कदी सत संगत दी सुगंधी नहीं लाई। हजूर कहिंदे ने जे तू सिमरन नहीं कर रहा, अमृत वेले जाग के इशनान करके अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती नहीं करदा, तां तू अपनी आत्मा दा आप घात कर रहे। दुर्लभ देह पाई वडभागी, नाम ना जपे ता आत्म घाती, मर ना जाई जै बिसरत नाम, नाम भी हुन जीवन कौन काम। हजूर कहिंदे नाम तो बिना तेरा जीवन केड़े काम है, ओ पशु मर जावे ता

दस बाल तन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी माझ दी वार विच आप बख्शिश करदे हन कि दस साल बचपन दे बीत जांदे हन, बीस रमण जवान हो गया, हुण घर दे सामान कट्ठे करन विच लग गए। तीसां का सुंदर कहावे, चाली सीपर होए पचासी, चाली ते पंजा साल दी उम्र तक इसने रात दिन एक करके अपने कार विहार तंदे कीते, पर परमेश्वर दे नाम दा कोई ख्याल नहीं कीता, नहीं उदा शुकराना कीता जिस वाहिगुरु ने अमोलक श्वास बख्शे सन। हुण पंजा साल तो उत्ते जदों उम्र हो गई, बुढ़ेपा आ गया, सत्रां दा मत ही

सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोसे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमृतचा दीवान सच्चा तेरा उपमृतचा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चा है सब दान सच्चा है सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तिहाइन सच।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा पावे कार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया लो आकार आकार कोई जी आखे सुख है जाने तिलक तेरी सार नानकू भगता पुख सलाहनु सच नाम आधार सदा आनंद रहे।

सुनो जनो एक संजम दुख जाए पौड़ी सिर की संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी बंदे पैदा रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अकला।

लोग पहला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया है खात पड़िया जेते।

सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्त है चंगे से के पौड़ी तुल कर जरा को तुर पाया ताकि अपनी खसम ते आया है न जलता कर उसके चनाई तुद वेख की जग तू आया एक रानो।

मथेटिका तेड़ तो सीख खाई, हाथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पहर होवे परवान, मलेश तहां ले पूजे पुराण।

वसे नित नित होए खुआर सूचे नाखिए बैंड पिंडा तो सूचे से नानकार जिन मन वसे असोए कोड़ी तुरे पलाने कौन वे हर रंगी हर सवार आगू से।

आटर तीर जे नाव है उतरे नाई मैल, जिन पट अंदर बाहर गुजरते बड़े संसार, तिन नेह लगा रब सेती देखना विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरी बात सचे नाम, दरबार ऊपर खर्च मंगा जब दे ता काहे दीवाने को कलमे का हम तुम हमें दर ले लिखा पीर छुटे नान का ज्यो तेल पौड़ी आप ही करना पियो कर आप ही तय धारी है देख ही तय अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण।

महाराज के दरबार विच ताऊ सरंदे ते रबाब वजा के इन रीतां दा कीर्तन सतगुरु की हजूरी च हुंदा रहा है। ये पुरातन रीत श्री हरिमंदर साहब की यह भेट है।

कि दुनिया नू हैरान कर देना है। ए गल क्यों कही आओ इस बारे विचार करिए। आनंदपुर साहब तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज निवास करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने

बहुत लोग गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दी। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी होईयां, हर लड़ाई विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जित हुई। आखिर औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली तो फौज भेजी, कुछ पहाड़ी राजियां दी फौज

एक कसम लिख के भेजी के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो किधरे होर चले जाओ। मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी के तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी। सिखा ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह नु महाराज आप किला खाली कर दियो।

उसने कुरान शरीफ दी कसम खादी। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खादी है ये साढ़े ते हमला नहीं करेंगे। पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साढ़े ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हैं कुछ दिन बीते। भाई मान सिंह इसने बेनती की थी, महाराज पता नहीं किन्ने दिन होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा, कृपा करो अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाइए। गुरु साहब ने कहा मैं ते पहला कहा सी कि जिन्हें मेरे को आना है, जिन्हें मेरी गली विच पैर पाना है, वो अपना सिर अपनी तली ते रख के आ।

करो पैर पिछे ना पायो पर जे तुहानू अपनी जान प्यारी सिखी प्यारी नहीं फिर इस तरह करो एक कागज लो उस कागज ते ए लिख दियो तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझे कागज लिया उत्ते लिख दिता तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नू छड़ के अपने घरां नू तुर पए पर गुरु डोलिया नहीं गुरु डरिया नहीं क्योंकि गुरु सच ते खलोता है सच वास्ते लड़ता है अपने भले वास्ते नहीं उते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

आनंदपुर साहब दे किले तू निकले, गुरु नू ए बिदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। अपने घरां नू तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियां दे नाल अपने घरां नू पहुंचे, घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के आए हां ते नाल ए वी लिख के दे आए हां, तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं। ए गल घरां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां, उन्हां ने कहा ठीक है अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे, पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तों सिख गवा के जीवना, को जीवना है एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी साडे पति धन ने जेड़े सेवा करदे मरे, अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नू छड के आए हो, मौत तू बहुत डर लगदे, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो इस साडियां चुनियां लै लो, पगां ला दियो, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दितियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कसे खोल के सानू दियो, कमर कसे करके असी जावांगियां, असी लड़ाई विच हिस्सा

पैया खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी को जीवना है, सिर झुका के जीवना को जीवना है। धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदिया मरना असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है आनंदपुर साहब दा किला गुरु साहिबां ने छड़ दिता, क्योंकि सिखां ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ दी कसम खादी उन्ना कसमां तोड़ दित्तियां, जिन्ना आटे दी गऊ बना के कसम खादी उन्ना भी कसमां तोड़ दित्तियां। गुरु साहिबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहिबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां।

जिथे वड़े साहबजादे शहीद हुए उथों तुरे माछीवाड़े आए माछीवाड़े तो चले कई जगह होंदे साहब जी जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे संगता गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईयां ओही रौनकां फिर लग गईयां पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं जदों गुरु साहिबां दे धर्म सपत्नी माता सुंदरी जी

ते मुगलां ने बादशाह ने मैनू खत्म कर देना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, कपूरिया भय वाले मना दी

म्यान विचु कृपान खिची जकारा छड़ेया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार केकेया पाई मैनू आज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं आज ए फैसला कर ले है, हम तो गुरहित

करेंगे कहां जो प्रब काज ना अहे इह। इस जीवन नु की करना है जे गुरु दी खुशी ना मिली। सिखी को आके जीवे ता क्या जीवे। सेवा करदे हां सिखी निभांदे हां मौत होवे ता जीवन सफल होवे।

दी पुछाड़ छड़ो ताकि दुश्मन नु पता लगे गुरु दा दल ऐस पासे। गोलियां दी पुछाड़ छड़ी वजीर खान भी गोलियां दा मीह बरांदा होया खिदराने दी ढाब वल वध्या। इधर गुरु के सिंह उधर वजीर खान ते उहदे सिपाही एक पासे तनखावां लैण वाले जिन्हां जाना भी बचाणियां ने एक पासे ओ जिन्हां गुरु तों अपनियां जाना वारनियां। लड़ाई शुरू हुई गोलियां चलियां तीर चले लाशां ते लाशां डिग रहियां ने धरती खून दे नाल लाल हो गई। उच्चे टिब्बी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठे ने। दान सिंह कहन लगे महाराज जापदा है दुश्मन ने हल्ला कर दिता है। ता गुरु साहब जी मुस्कुराते हुए कहन लगे दान सिंह जे दुश्मन ने हल्ला कीता है ता खालसे ने भी बोलबाला कर दिता। कमसान दा युद्ध शुरू हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्ची टिब्बी ते बैठे कदी कदी ऐसे तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने ते उन्नूं बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दियां लड़दियां 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां किरपानां कढ़ियां हत्थां विच ढालां फड़ियां जकारे छड़ दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा किरपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणन शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रणन छत्र गाहे रणन कहंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोऊ बड़े उत्साहे परे शस्त्र मारे महा जंग माहे कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सोछाले उछाले म्यान विचू तेग कड़ी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखेया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह दा डंका बजाया वापस मुड़ गया हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुँह पे है सैंकदा पे है सा टुटदे ने हुण भाई मान सिंह अरदास पिया कर

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं।

ना गुरु नाल जुड़िया ना अमृत नाल जुड़िया वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मां सिंह जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोगों नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं होंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्हों रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है ते उहदे प्यारे पूरे ने। वो पूरा कदी नहीं होया जिहदा जीवन उच्चा है। किन्नी कृपा होई भाई मां सिंह, एक उहदा मरना जिहड़ा गुरु तों बेमुख होके मरदा है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा। एक मरना भाई मां सिंह दा, उन्हां दे साथियां दा, जिन्हां दा संस्कार धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप कीता, उस जगह ते नाले वर दिता। इस जगह दा नाम हुण मुक्त सर होवेगा, जिहड़ा इत्थे आएगा प्यार शरदा नाल वो मुक्ति नूं प्राप्त होवेगा, वो जो मंगेगा उसनू प्राप्त होवेगा। अज जदू भी कोई मुक्तसर जांदा है, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकदा है, वो इन्हां शहीदां नूं भी मत्था टेकदा है जिन्हां ने सेवा बदले, जाना वारियां, जाना दे नाल प्यार नहीं कीता, गुरु नूं सच्चा उच्चा समझ के सेवा कीती ते सानूं राह दस्या है। भाई जिहड़ा सिखी गवा के पत धो के जीउंदा है, ओहदा जीउणा कोई जीउणा नहीं।

कि असा ता गुरु वास्ते प्राण देने ने और प्राण दिते भी। आओ भाई अरदास करिए, सच्चे पिता एहो जिहा जज्बा एहो जिहा उत्साह सानू भी दे ता कि तेरे राह ते चलदे होए सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीवीए जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकीए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए अते अपना जीवन सफल करिए।

श्री महाबली महायोधे सर्वांशदानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हें इस दुनिया में आके एक नवा काम किया, जिन्हां नूं दुनिया ने नीच किया छोटे समझिया उन्हां नूं अमृत छका के अपने वर्गे बना लिया। अगर कोई चमार अगर कोई चूड़ा भी अमृत छक लवे रहत बहत विच रवे गुरु दे उपदेश ते चले।

खालसा मेरो भवन भंडारा, खालसा मेरो करत उधारा, खालसा मेरो सज्जन परवारा, खालसे कर मेरो सत्कार।

हर सा मेरो स्वार्थ सही, हर सा मेरो सज्जन रसूरा, हर सा मेरो सतगुरु पूरा, उपमा खालसे जातन कई, जैवा एक पार ना लई, शेष रसन सार्ग सी बुद्ध।

भाई इन्हीं की भावत अरहन की सेव सुहातन जी को दान दियो इन्हीं को भलो अरहन को दान में लागत नी को आगे फले इन्हीं को दियो जस जग में और दियो सब फीको मोह गृह में तनती मनती सिर लो

ए गुरु की संगत सिख एजुकेशन विद्या का प्रचार। आहा ए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अपनी दात निरंकार तो मंग रहे हैं।

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोची, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तो बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वह मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उनका फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नू, ऐस नहीं अगले जन्म नू, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है, उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया, जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे, सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझने। हालांकि साहिबां ने पावन बाणी च बड़ी सख्त प्रेरणा कीती है। साहिब कहिंदे ने, कर मित्राई साहिब सिरसा साध स्यों नेचर पावे था। जे मित्रता करनी है ना, नानक कचड़िया स्यो तोड़, टूंड सज्जन संत पकिया, तू मित्र लभने ने ते पक्के मित्र लभ, कचिया पलिया दे नाल की मित्रता पाउणी है, जिन्हां दा अपना कोई स्टैंड नहीं। अज कम करदे ने कल नूं पछताउंदे नजर आउंदे, अज कुकर्म करदे ने कल नूं उहनां कुकर्मां दे फल दे सामने रोंदे नजर आउंदे। निराए ही नहीं, ए जे कच्चे मित्र तेरे भी नाल निभ नहीं सकने, ओए जीवंदे विछड़े, जूंदिया ही जिंदगी च कोई औखा वक्त आ गया ते छड़ के तुर जाणगे। तू उहना मित्रा नाल सांझ पा जेड़े साहिब कहिंदे ने, ओए मोया ना जाही छोड़, इत्थे भी तेनू सुख देण ते दरगाह विच भी तेरा साथ दे सकण, उत्थे भी तेरी बौड़ी कर सकण, जिन्हां दे सदका जिन्हां दे नाल लग के उत्थे भी तेरा भला हो सके। संसार ते भी ऐसा तुसां वेखिया है, किसे भले आदमी नाल मित्रता ही होवे, किसे नेक बंदे नाल मित्रता ही होवे, कोई औखा सौखा वेला आ जावे, आवाज मार लो, बुला लो मित्र नूं कि मैं फसिया, गलत काम कर बैठा, भुल हो गई, ये गलती हो गई, या वैसे ही फस गया, मित्र आ जावे। जिस सभा सोसायटी दे सामने, जिस समाज के सामने असी मुजरम हाँ, उस मित्र दे कोल आके बह जाण दे नाल फिर पंच कहिंदे, ओ कहिंदे ने भई तू आ गई है, तेरा मित्र इस करके छड़दे ने, तेरे कहण ते छड़दे ने, तू इहदी शादी भरना ते छड़दे ने, तेरा मित्र इहते लिहाज करदे ने, तेरा पुत्र इहते लिहाज करदे ने, तेरे भरा करके छड़दे ने। चंगे बंदे दा प्रभाव पैंदा, जे कि उन्हां लोकां नाल जिन्हां ने दरगाह तक निभ जाना साडी सांझ होवे, उन्हां दे सदका उत्थे भी बख्शे जा सकदे, बल्कि उत्थे बख्शे जाण दी गल जे एक पासे रख दईए, जीवन विच ही मनुख भले लोकां नाल मिल के उन्हां दी रंगण च रंगिया जाके, ऐसी दशा आउंदी नहीं, ऐसी नौबत आउंदी नहीं कि मनुख कोलों कोई लेखा पुछण जोगा रहे। चंगे मित्रां ने मनुख नूं हमेशा सुधारिया। मित्र चंगा होए जिहड़ा सामने बैठ के प्यार नाले गल समझा दे। सजना जीवन विच विकार सोभा नहीं देते, माड़ियां आदतां माड़े कर्म तेरे जीवन नूं तबाह कर देणगे। ते ओ मित्र बड़ा चंगा है जेड़ा बाह फड़ के गुरुद्वारे लै आवे, गुरु नानक दे दरबार विच लै आवे, जेड़ा जिस वेले मेरे गुरु की गल करे, प्रभु की गल करे, बाणी की गल करे, जेड़ा मित्र ईश्वर की गल करे, भगती की गल करे, धर्म की गल करे ना, उहदे नालों चंगा मित्र सानूं संसार ते होर कोई नहीं मिल सकता। असां तां इह वेखिया आम तौर ते कि जिस मित्र नाल मन परच जावे उह चंगा मित्र है, या जिस मित्र दे मिलिया कुछ चार पैसिआं दा लाभ हुंदा होवे उह चंगा मित्र है। लेकिन महाराज कहिंदे ने, उह मित्र जिहड़ा प्रभु नाल जोड़दा, उस मित्र तों मैं अपना तन मन धनवार नहीं करदे, तन मन धन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, जेड़ा मेरी प्रभु नाल सांझ पुआ दे
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਬਾਣ ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਪਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਲੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਲੋੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਚ ਰਹਤੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਨਿਭਾਹ ਲਿਓ ਮੋਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੋ ਤੇ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਤੁਰ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਓੜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਦਾਤੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਰਨਾ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਜੀੜਾ ਨਾ ਦੀਜੈ, ਜਾਂ ਸੋ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਪਰੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਸਾਨੂੰ

मैं अनजान हाँ, मैं तैरना नहीं आता, तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ कृपा करो सरवण।

कोई गावे कोई सुने, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृतमयी बाणी, जिस बाणी प्रथाएं

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नूं दित्ती है, मेहर कीती है पातशाह ने। आख्या भाई कोई सुने, कोई गावे, कोई उपदेश करे, किसी भी जाति का होवे, कोई नीच कोई ऊंच नहीं, बल्कि सारे का सत्कार है इस पर।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चरण कमल गुर के जप हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जप हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाऊं लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया चंदा निक प्रिया।

हर हर चरण दे और धारे, हर हर चरण दे और धारे, शिव स्वामी सदगुर अपना काज सब हमारे, पुंदान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे, पुनदान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगमय पारे, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिलका पार कछ न विचारे, नाम रतन सुन जप जप जी।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लैं के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उत्थे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, इहदे विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण किया है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, चरण चलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। वो मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर की उस्तुति करनी, उदे गुण गाने, ये मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ये रचना पवित्र हो जाती है जो नाम का अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया, उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सके हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जाणगे। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।